लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मालूम है कि आज हमारे क्लब की गोल्डन जुबली है। इस खुशी के मौके पर आपकी खिदमत में एक निहायत ही अनोखा प्रोग्राम पेश किया जाएगा। आपने जो डांस देखा है उसमें सिर्फ रिदम पर ही जोर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये पश्चिम से आया है, यानी इसका ताल्लुक वेस्टर्न म्यूजिक से। लेकिन ऐसी बात नहीं, हमारे देश में भी हजारों वर्षों से रिदम यानी